किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Listener's Choice, brought to you by Utsav Plus.
1: I love you, Dr. Noemi. Love you, Doctor.
2: ये तुम्हारा बचपना है, प्यार नहीं। उम्र देखिए तुमने अपनी। हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता।
1: तब तक लोगों की परवाह करती रहोगे, तक अपने दिल की आवाज से दूर भागते रहोगे।
3: Watch Sehrab, a heartfelt musical romance every day at 6 p.m. only on Utsav Plus.
4: There you go. Well done to Sean Barvey and Milton Keynes, first and the only one to get it right this morning. Good morning, Vips. Hope you're doing well, buddy. Right, let's have another crack, shall we?